सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनहो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पात कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूरख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता,

पावन पवित्र खाजूरी अंदर सोभाए मान गुरु सवारे सत संगी जनो आओ उन्हां महान शहीदां नूं और गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द दी टेक लैके आपां विचार कर सकीए। आप जितने भी कृपालू दाता जी दी चरण शरण विच एकत्र होए हो अपने अंदर नूं टिकाण दा यतन करिए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह अंदर दी एकाग्रता बख्श आप ही विचार करा लवो। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी अनुसार जेड़ी वस्तु अपने मूल तो विछड़ जाए अपने असले तो अपने धुरे तो अपने मरकज तो दूर चली जाए उस वस्तु दे अंदर खिंडा पैदा हुंदा है। उस दे अंदर दी निर्मलताई उस दे अंदर दा सुहापन उस दे अंदर दी सुंदरता उदो ही खत्म होनी शुरू हो जांदी है जदों ओ अपने धुए तो वक हो जांदी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विच दातार जी ने चार महान दुखां दा जिक्र कीता है। असल विचो चार दुखां विच कृपालू दातार जी ने सब तो वड्डा जिहड़ा दुख है ओ विछोड़े दा मनिया है। दूसरा दुख गुरु नानक साहिब जी दे शब्दां अनुसार मन अंदर उठी कोई तृष्णा मन अंदर उठी कोई भुख। तीसरा दुख मौत दा ते चौथा दुख इस पांच भूतक शरीर विच रहिंदिया होया तन नूं कोई रोग लग जाना। तन गुरु नानक साहिब जी ने इन्हां चार दुखां दा जिक्र करदिया अमृत बाणी विच बख्शिश कीती। दुख विछोड़ा एक दुख भूख सब तो पहला दुख जो है वह विछोड़े दा है। जदों अपना कोई सज्जन मित्र विछड़ जाए ओदा विछोड़ा भी दुख पैदा करदा है। शरीरक तौर ते विछोड़ा अंदर नूं खला के रख जांदा है ते जदों कोई अपने अंदरों विछड़ जाए ते सच जाणो उसका अंदर किन्ना कु बेहाल होवेगा। हजूर ने कहा दुख विछोड़ा एक दुख भूख दूजा दुख है भुख दा ते इत्थे भुख दा अर्थ केवल तन दी भुख नहीं मन दे अंदर तृष्णा दी बलदे होए भांबड़ अंदर दी भुख कदी शांत ना होनी तृष्णा भी तां एक बहुत वड्डा दुख है। दुख विछोड़ा एक दुख भूख ते तीजा दुख है एक दुख सख्त वार जमदूत मौत दा दुख है एक दुख रोग लगे तन ताए आ चौथा दुख शरीर नूं कोई लग जाना कहन लगे वैद ना भोले दारू लाए। हे भोले वैद तू तो केवल तन ते रोग जानने तन ते रोग तो पहला तीन अंदर दे रोग ने अंदर दा विछोड़ा अंदर दी तृष्णा मौत दा भय सच जानी ए तीन रोगां दी निवृत्ति गुरु तो बिना कोई नहीं करा सकता। अज जिन्हां दी याद विच आपां जुड़े बैठे हां उन्हां नूं पहला दुख अपने गुरु दे चरणां दे विछोड़े दा सी अपने प्यारे दे चरणां तो विछड़ जाना। ते अर्ज मैं कर रहा कोई भी चीज अपने धुरे तो अपने मरकज तो विछड़ जाए ते कुदरती तौर ते विछोड़ा उहदे अंदर कोई ना कोई तब्दीली जरूर पैदा करदा। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों कुछ प्रमाण आपां वाचने ने जिहदे विच हजूर ने इशारा कीता है कि विछोड़ा हमेशा दुख नूं जन्म दिंदा है। गुरु नानक साहिब जी दा एक अमृत बचन है सलोक 12 ते वधीक विच असीं पढ़ने दातार जी ने उदाहरणां आम संसारक तौर ते समझाण वास्ते लईआं ते उदाहरण दा मतलब ए नहीं हुंदा कि केवल अपनी विद्वता दा जोर दिखाना। उदाहरण दा मतलब ए नहीं कि बहुत सारियां विचारां इकट्ठियां कर लेनियां। कोई भी उदाहरण एग्जाम्पल दित्ती जांदी है उहदा भाव है कि उस बाहर दृष्ट मान चीज नूं देख के अपने अंदर दे जीवन नूं कमा लै। हजूर गुरु नानक साहिब जी ने विछोड़े दे दुख नूं बयान करदिआं होइआं अमृत बाणी विच इक वचन कहा है। कृपालू सतगुरु गुरु नानक साहिब बख्शिश करदे ने कि पानी दा एक सरोवर है जिस सरोवर दा निर्मल नीर

निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक

होते परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन सरवन कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैया विचों पटां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवन कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरुदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां। जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदार एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरुष कोई गुरमुख जन बैठदे ने, ये बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी है। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तों बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिजक देण वाला परमेश्वर। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है जिहड़ा पहरन नूं वस्त्र दिंदा है खाण नूं भोजन दिंदा है तन ते पाण वास्ते सुंदर गहने लै के दिंदा है ते इह खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदों इहनूं पुछया गया तूं क्यों नहीं बोलदी ते इस बच्ची ने इक्को उत्तर दिता सी नहीं भैणों ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਪਾਨੀ ਹਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀਆਂ ਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पे ए भी उस करतार दी दित्ती दाते ऐवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला कोई किसे नू देण वाला नहीं अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कह लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि वो करतार वो निरंकार तेरे भागां विच जे ओवे तू अपने भागां विच इत्थे नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर ले इथों तक आपां ने विचार कीती सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नू आपां वाचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नू गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता है, पर जदों इतिहास नू पड़चोलने आ ते असलीयत इह प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन, पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता है, पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नू बयान कीता है, अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे ने। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नू अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारियो इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तो पहला मनोबिरतियां एकाग्र करो, सुरत गुरदेव दे चरना अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष। बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता की आग्ञा नूं सत करके अपने सिर

जप आदि सच जुगाद सच है कि सच नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

जप आदि सच जुगाद सच है ही सच नानक होशी ही सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे

0: बीच मुतैर पकड़ के सोटा पकड़ के पैसा गुरु गोबिंद सिंह हाथ पे कह लगे महंत जी किधर चले गए बैरागी। कहिंदा महाराज मौत तो किन्नू नहीं डर लगता, जिंद किन्नू प्यारी नहीं। ते गुरु गोबिंद सिंह कह लगे तू क्यों नहीं गया। कहिंदा भजदा ते मैं भी सा पर जेड़े पासे जांदा सा केवल तू ही दिसदा पिया सा। हुण देखो जे अंदर दी बिरती। कहिंदा लड़िया मैं कदी नहीं, आ उन दी माला कली फेरी है जपिया वाहगुरु वाहगुरु ए, आ लंगोट बन के आ खपनी जी गल विच पाई बैठा मैं तेरा वा, भावे ए शरीर दे टुकड़े टुकड़े हो जाण मैं तेरे दर नू छड़ना नहीं। साहब ने हथ के क्या वे चंगा उदासियां दी जड़ तू रख लई। उदासी बच गए, उन्हां दी जड़ रखी, केवल एक उदासी रह गया। सारे छड़ के चले गए, कुछ कु कहिंदे 2,000 दे करीब गुरु गोबिंद सिंह के केवल सिख ने, इधर 10,000 दी फौज ढाई करके आई। ते साहब ने मैदान चुनिया पगाणी दा, पौटा साहब दे नेड़ी अज ओ स्थान बन चुका है जिथे ए युद्ध होया है। कदी जायो थले दीवे थां ते इक कबर भी है, इक द्योरा भी है, ओ हरिचंद जिदा अगे जिक्र आउणा है गुरु गोबिंद सिंह दे तीर नाल बिन्निया गया। एक एक चीज जिहड़ी है जदों भी इतिहासिक थां ते जाओ ना, भावां लिखिया बहुत कुछ हुंदा है पर उत्थे बजुर्गां नूं मिल के पुछ के देखो ते चेते रखो, बहुत घटनावां ऐसियां ने जिहड़ियां सानूं उत्थे लोकां कोलों मिल गईयां जो लिखतां विच नहीं। साहिब गुरु गोबिंद सिंह ने पौंटा साहिब छड़ दिता, पंगाणी दी थां ते आ के एक गोल गतारा बना लिया। 10,000 दी फौज आई, साहिब ने अपने 5 भुआ दे जिहड़े पुत्तर सन उहनां नूं तैयार कीता, आप उच्ची तिब्बी ते खलो गए। कृपाल उदास जिहड़ा उदासी सी इह वी साहिब दे कोल खलोता, उधरों पहाड़ियां विचों अगवाई करदा आया फतेह शाह। साहिब देख के मुस्करा पए, इह उही बंदा जिहड़ा कल तक मेरे नाल सुलह करके चरणा थले हथ रखदा सी, अज ओह गुस्से विच भरिया होया गुरु नूं तबाह करन आया। ते इह विद्वानां ने नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचित्र नाटक विच इस युद्ध दा जिक्र कीता। साहिब कहिंदे ने सब तो अगे इन्हां 400 पठान लाए, ये पठान पहुंचे, इन्हां दा आगू सी हयात खां। हयात खां ने जदों हल्ला कीता ते गुरु के भूआ दे पुत्रा पंजां ने इहो जी तीर दी बाछर लाई कि पठान दा मूंह मोड़ के रख दिता। पिछा नूं मुड़े ते फतेह शाह कहिंदा पठान जी तुसीं कहिंदे सो सारे उन्हें जट बूट कमी कमीन कट्ठे कीते ने, लड़न वाला ही कोई नहीं, लुट तां सारी तुहाडी है पौंटा साहिब दी, पहली वार नहीं तुसीं चल चके, पिछा नूं मुड़े अगे नूं होवो। कह लगे हयात खां ललकारा मार के लै के अपनी तलवार अगे निकलिया। हुण देखो गुरु दी करामात, कोल महंत कृपाल दास उदासी खलोता सी, कहिंदा महाराज इह उही हयात खां नमक हराम है जिन्हें तेरे घर दियां रोटियां खा के अकिरत कणता कीती। ते पुछिया साहिब कहिंदे ने तू की सोचना। कहिंदा लड़िया ते मैं कदी नहीं, पर एक वारी असीस दे इहदे नाल मैं दो हथ करदे चाहना। कदी तको गुरु गोबिंद सिंह दी रहमत, सिखा यकीन कर दृढ़ अराध्या वालियां दी जित पैर चुमदी ए, जेड़े लोग अराधी ढा के बह जाण ओह जिते होए वी हार जांदे। आ साहिब ने बाणी विच कहा नहीं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, एक निश्चा भरोसा ही ऐसा है जेड़ा बंदे नूं जित तक लै जांदा, जदों अंदरों दृढ़ता ही मुक जाए ते फिर चेते रखो जिते होए वी घरां नूं हार के आ जांदे। हयात खां कहिंदा महाराज असीस दिओ मैनूं। ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह दे दर विच पहले दिन अज कृपाल दास वाहगुरु कृपाल दास उदासी हयात खान नाल टक्कर लैण लई घोड़े ते सवार होए। साहिब ने कहा कृपान नेजा बरसा कोई नागनी कोई तीर। कहिंदा बस तू असीस दे दे, सारी जिंदगी सोटे ही चलाया है, आ सोटे ही मेरे हाथ विच, तू नजर करदा रही देखी अज इस साहब दे कारजां ने। साहिब ने असीस दे के जदों तोरिया ना ते सामने हयात खां आया ललकारे मारदा, ते कहिंदे ने इक्को दम हथ पै। पठान कहिंदे ने देख गुरु का सूरमा ढिलण जिहा आउंदा पै, शरीर दा भाड़ा सी थोड़ा जिहा मंद। कहिंदा देख ढिलकवां शरीर तुरिया आउंदे गुरु का जरनैल। हयात खां टिचर करके कहिंदा बाबा जी सचखंड दे बूहे ते जा के दस्तक देनी चाहुंदे हो कि साडी जन्नत भी जाना चाहुंदे हो। कहिण लगा हयात खां तू वार कर, मैं तेरा मुकाबला करना आ। साहिब गुरु गोबिंद सिंह टिब्बी ते खलो के तकदे ने। हयात खां ने फिर मजाक कीती, जा बाबा जा के माला फेरिया कर, ते गल विच उन दी माला।
1: जाके माला फेर तेरा कम लंगर पानी छक तू कितों मेरा मुकाबला कर लेगा असी तो कई पुछना तो सुरमे तुरे आने। उस वक्त कहिंदे ने हयात खान नूं बाबे ने अखीर दी गल कही कहिंदा जे अम्मा दा पठानी दा शीर चुंगे ही ना भावे मैं बाबे नानक दा घर दा साध गुरु गुरु जपण वाला वा पर चेते रख जे तेरी ताकत है तां मेरे ते तीन वार पहला कर ले। उस उदासी बंदा लगोट बन्निया बंदा कहिंदे हयात खान ने पहला वार कीता ते उस वक्त करपाल दास ने रोक लिया, दूजा वार कीता फिर रोक लिया, तीजा वार कीता फिर रोक लिया। ते गुरु गोबिंद सिंह देखते पे सन करपाल दास ने इको दम घोड़े दियां लगामां छड़ दित्तियां ते रकाब उत्ते खलो के पैरां दे पार दोनों हथां नाल पकड़ के डंडा हयात खां दे सिर विच मारिया ते गुरु गोबिंद सिंह देख के हथ पै सिर विचों मिज इंज निकली जिवें किते कृष्ण मक्खण दे भांडे भरे होए नूं जमीन उत्ते सड़दा होवे। साहब ने विचित्र नाटक विच बचन क्या कहन लगे करपाल कोपियंग कुतका संभारी। विचित्र नाटक विच बचने करपाल कोपियंग कहिंदे ने फिर मेरा मंत उदास दास करपाल दास कोपियंग गुस्से विच आ गया करपाल कोपियंग कुतका संभारी कहन लगे हटी खान हयात के शीस जारी। हयात खान जेड़ा हटी सूरमा सी उहदे सिर च इक मारिया ते अगे साहब हथ के लिखदे ने उठी छिछ इछंग कड़ा मेज जोरंग कहने इन्ने जोर दा साधु ने डंडा मारिया के अंज होया जिने मक्खन दा भांडा किसे कृष्ण ने डंडा मार के पिन्या होवे इको दम उहदे सिर दी मिज निकल के बाहर खिलर गई। कहन लगे करपाल कोपियंग कुतका संभारी हटी खान हयात के शीश झारी उठी छिछ इछंग कड़ा मेज जोरंग कहन लगे मानो माखनंग मटकी कान फोरंग मानो कृष्ण ने जिमे मक्खन दी एक मटकी बन दी होवे। करपाल दास हयात खान मार के पिछा आया ते गुरु गोबिंद सिंह ने घुट के सीने न लाया करपाल दास मेरे गुरु नानक दी तेरे ते कृपा तेरी अखीर तक निभ जाएगी। जदों इधर जंग होया उधर हयात खान की मौत हुई ते दूसरा सी नजाबद खान ए बड़ा तकड़ा तीर अंदाज ही है ए भी वह पठान जिहड़ा भर्ती होया ए तीरां दी बरखा करदा आया ते उधरों गुरु गोबिंद सिंह जी दी भूआ दे वड्डे पुत्तर संघो शाह ने इजाजत मंगी गुरु गोबिंद सिंह मैनू कृपा करके दियो इजाजत मैं मुकाबला करा। दोनों सूरमे जूझे नजाबत खां ते भाई संघो शाह ने तीरां दी एक दूजे ते बरखा कर दित्ती ते गुरु गोबिंद सिंह विचित्र नाटक विच लिखदे ने एक सांझा वार होया उधरों नजाबत खां दी मौत हो गई ते उहदे फट्टे फट लगे होए नाल संघो शाह भी जिहड़े ने शहादत दा जाम पी गए। उत्थे साहिब ने कलम चोक एक दोहरा लिखिया कह लगे मार नजाबत खान को संगो जुजे जुझार। बचित्र नाटक मार नजाबत खान को संगो जुजे जुझार हा हा ए लोका भयो सुरग लोक जयकार। कहने मेरी भूआ का पुत्र जदों दुनिया तो गया ते रब दे घर विच उहदी करनी नूं देख के जय जयकार कीती गई। पहला संगो शाह शहीद होया परत के दूजा इन्हां दी भूआ का पुत्र जीत मल उन्हें इजाजत मंगी उहदे मुकाबले ते हरी चंद आया। यह बड़ा तकड़ा तीर अंदाज सी इहदा तीर कदी खाली जांदा ही नहीं सी। उधर जीत मल इधर हरी चंद दोनों का जंग अत का यह लड़े ने इधर जंग हुंदा है ते किसे ने खबर जा संडोरे दित्ती नेड़े पैंदा सी पीर तेरे भेजे हुए पठान दगा दे के चले गए। पीर ने पल्लू फेर दिता संडोरे दे चार चबेरे कहिंदा जेड़ा मैनू प्यार करदा है ओ अपने घरों सिर ते मौत दा खफड़ बन के तुरयो की होया जे पठान धोखा दे गए चार जवान पुत्र अपने दो सके भरा प्रिंसीपल सतबीर सिंह लैंदे ने अपने बापू नूं भी नाल लै लिया अपना बाप दो भरा चार पुत्र ते 700 मरीद लै के उह पंज वक्त दा नमाजी पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा तो फिदा होने वास्ते जांदा पे। उधर जग पूरे जोबन ते वे ते पीर बुद्धू शाह ने एक पासिओं आके हल्ला कीता ते साहिब ने पुछया ए करलाट क्यों किसे ने कहा पीर बदरुद्दीन आ गए ने। साहिब हस के कह लगे मैनूं आस सी कि सिदक वाला ये मुड़ के जरूर आवेगा। उधर वो जूझते रहे उत्थे फिर साहिब कहिंदे ने हरी चंद ते जीत मल दे जंग विच जीत मल नूं सीने विच तीर वजा वह शहीद हो गया। हरी चंद नूं वजा वह बेहोश होके जमीन ते डिग पिया।
0: ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਹਾੜੀਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਖਣ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਦੋ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖਣ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਯਾ ਅਲੀ ਕਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਸ਼, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰਤ ਕੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਪਾਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇੱਥੇ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਬਣਦਾ। ਸਹਿਬ ਫਿਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੁਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਰ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਨਹੀਂ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਐਵੇਂ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪੇ ਕਮਾਣ ਸਵਾਰੰਗ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪੇ ਕੋਪੇ ਦਰ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਣ ਸਵਾਰੰਗ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜੀਅੰਗ ਤਾਣ ਬਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰੰਗ, ਪ੍ਰਥਮ ਦਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਬਾਜੀਅੰਗ ਬਾਜ ਦਰਥ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪੇ ਕਮਾਨ ਸਮਾਰੰਗ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜੀਅੰਗ ਤਾਣ ਬਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰੰਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਤੀਆ ਤਾਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਇਆਂਗ, ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਤੀਆ ਤਾਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਇਆਂਗ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਓ ਦਾਈਵ ਮੈਂ, ਦਾਈਵ ਦਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਾਨ ਸਵੈ ਕੈ ਸਧਾਇੰਗ, ਇਹ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪੇ ਕਮਾਨੰਗ ਸੰਹਾਰੰਗ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜੀਅੰਗ ਤਾਣੰਗ ਬਾਣੰਗ ਪ੍ਰਹਾਰੰਗ, ਦੁਤੀਆ ਤਾਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਇੰਗ, ਰੱਖਿਓ ਦਈਵ ਮੈਂ ਕਾਨ ਸਵੈ ਕੈ ਸਧਾਇੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਤੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ, ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮਾਣ ਮਾਰਿਆਂਗ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ, ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਅੰਗ ਚਿਲਕਤੰਗ ਦਵਾਲੰਗ ਪਾਰੰਗ ਪਧਾਰੰਗ, ਇਹਦੀ ਤੀਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿੱਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਿੰਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਅਰਧ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਾਣ ਮਾਰੰਗ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ, ਵਿਦਿਅੰਗ ਚਿਲਕਤੰਗ ਦਵਾਲ ਪਾਰੰਗ ਪਧਾਰੰਗ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁਬੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮੰਗ ਕਸ਼ੂ ਘਾਏ ਨਾ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੁੰਝ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁਬੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲੰਗ ਕੇਵਲੰਗ ਦਾਸ ਜਾਨਿੰਗ ਬਚਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਨਾਲ ਬਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੰਝ ਉਹ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੁਬੀ ਚੰਚ ਚਰਮੰਗ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਤਾਏ ਆਏੰਗ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲੰਗ ਕੇਵਲੰਗ ਦਾਸ ਜਾਨਕ ਬਚਾਏਂਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੀਰ ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਰਨ ਲੈ ਕਮਾਨੰਗ ਹਨੰਗ ਬਾਣ ਧਾਨੰਗ, ਸਭੈ ਵੀਰ ਧਾਏ ਸਰੋਵਰ ਚਲਾਏ, ਤਬੈ ਤਾਕ ਬਾਨੰਗ ਹਣਿਓ ਏਕ ਜਵਾਨੰਗ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਜੋਧਾ ਲਿਤਾਰੇ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ,
1: ਕਰਨ ਲੈ ਕਮਾਣਗ ਹਣਗ ਬਾਣ ਤਾਣਗ ਸਭੈ ਵੀਰ ਧਾਏ ਸਰੋਗਨ ਚਲਾਏ ਤਬੈ ਤਾਕ ਬਾਣਗ ਹਣਿਓ ਏਕ ਜਵਾਨਗ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਿਤਾਰੇ ਸਾ ਕਰੋੜ ਰਾਇੰਗ ਵਾਹੇ ਕਾਲ ਕਾਇੰਗ ਸਭੇ ਤ੍ਰਿਣਗ ਤਿਆਗ ਭਾਗੈ ਸਭੇ ਤ੍ਰਾਂਤ ਭਾਗੈ ਫਿਰ ਸਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा खौ करी वखियान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा खौ करी वखियान। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी हफ्तावारी दीवान विच सतगुरु दे पवित्र चरण स्पर्श करन वास्ते साहिबां दी प्यारी गोद विच इकत्र होए बैठे हो। जिवें आप जी नूं ए सब नूं जानकारी है कि 27 जून नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी बरसी सी, जिस नूं आपां अज सतगुरु दे घर अंदर मना रहे हां। आपने बड़े प्यार दे नाल कीर्तन भी सरवण कीता है और गुरमुख प्यारियां तों उस दृश्य नूं तवारीख दे उस पन्ने नूं सरवण कीता जदों महाराणी जिंद कौर अपने सपुत्र दे शीश ते केस ना देख के उसने सब कुछ सह लिया अपने उते, पर इहनूं ना सह सकी कि कलगी वाले दी मोर मेरे पुत्र दे सिर तों गुम हो जाए। आओ उस

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

त्रेहि ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साधु संग नानक जस गयो जो प्रभ की अत प्यारी साधु संग नानक जस गयो